0: साल पहले मेरी कदीम मिस्री चीनी अफ्यून और उसके किस्म की जड़ी बूटियां बेहोशी में इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम माशरे में स्लीपिंग स्पंज के नाम से बेहोशी के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्स स्पंज को एक ऐसे मुरक्कब में डुबो देते जिसमें अफ्यून, मेंड्रिक, हेमलाक जूस और कुछ दीगर मादे घोल कर से खुश करते। चुनाई से पहले डॉक्टर स्पंज को गीला करते थे, इसे मरीज की नाक बढ़ाकर बेहोश कर दिया करते थे। लेकिन चूंकि इस तरीकाकार का असर सूरज से खत्म हो जाता था, इसलिए सर्जरी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना पड़ता था। अगरचे इनमें तिब में होने वाली पेश रफ्तें वक्त के साथ साथ जराही के तरीकाकार में इन दरियाफ्तों की राह हमवार की, लेकिन ऐसे मरीजों के हवाले से इकदाम जिनके दांत निकाले गए हैं या बगैर दर्द के सर्जरी करवा रहे हैं, इन पेश रफ्तों के मुतवाजी तौर पर पेश रफ्त नहीं हुई। 19वीं सदी के आकाश में जराही के तरीकाकार भी बहुत नायाब थे। दरहकीकत बड़े शहरों के अस्पतालों में हर हफ्ते सिर्फ एक दो सर्जरीज की जाती थी, लेकिन तब्दीली इस मैदान में भी दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। ४८४४ में हार्टफोर्ड में कम एक दमदान सांस के तौर पर काम करने वाले हॉरिस वेल्स एक स्टेज शो देखने के लिए खुले बाग में गए। इस स्टेज शो की तस्वीर में लिखा गया था, हैरत अंगेज तमाशा, हंसने के साथ हौसला अफजा गैस। स्टेज में शिरकत करने वाले वो लोग जिन्होंने इथर पर मुश्तमिल गैस का मुरक्कब सांस लिया, वो मुझसे का खेज बातें कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, ऊंची आवाज में हंस रहे थे। फिर जिसने मुजाहरे को दिलचस्पी से देखा ने मुशाहदा किया कि लोगों में से एक जो गैस आजमाने के बाद पुरजोश अंदाज में गाना गा रहा था, लोहे के बेंच के किनारे पर अपना पांव पूरी तरह जख्मी कर चुका था, लेकिन शख्स हंसता और नाचता रहा। वे शख्स के पास गया और कहा कि हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस के दौरान जख्मी हुआ हो, लेकिन शख्स ने इस पर यकीन नहीं किया। वे जो शख्स की पतलून की टांग को ऊपर खींच रहा था ठीक कह रहा था, वो शख्स बुरी तरह जख्मी था लेकिन इसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। अमरीकी डेंटिस्ट सुर्ख्या को देखकर बहुत मुतासर हुआ, उसने अगले दिन पहले इस गैस मिक्सचर को खुद सांस लिया, फिर इसके असिस्टेंट को बगैर किसी दर्द के इसका बोसीदा दांत निकालने को कहा। और इस वेल्स जिसने चंद हफ्ते में इसी तरीके से 15 मरीजों के दांत निकाले, बोस्टन के अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में तिब्बी तलबा शहरियों अस्पतालों के बानी के सामने अपनी नई एनेस्थीसिया की दरख्वास्त को मुतारफ करवाने की दरख्वास्त की, लेकिन वेल्स का मजाक उड़ाया गया। माह बाद इसी अस्पताल में वेल्स के तालिब इल्म और दंदान सास दोस्त विलियम थॉमस ग्रीन मोर्टन, जिसके साथ इसने कुछ अर्सा काम किया था, एक और तजर्बा किया। इस बार एक घने एथर मुरक्कब से वो अपने मरीज का ऑपरेशन किया जिसने कभी जिंदगी में शराब नोशी नहीं की थी। ऑपरेशन के 10 मिनट के अंदर जब मरीज ने कहा इसे जराही के दौरान कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, तो ग्रीन मोर्टन ने एनेस्थीसिया की नई एप्लीकेशन का ऐलान कर दिया जो वेल्स की इत्तफाकिया दरियाफ्त थी। इस दरियाफ्त के बाद नया तरीका यूरोपीय मुल्क में सूरज से फैल गया, लेकिन इथर के कै पैदा करने वाले जिमनी असरात के आतश की दमा का खेज खसूसियात ने अब भी कुछ मालजिन को दूर रहने का सबब बनाया। बहुत मुख्तसर वक्त के बाद जब यह पता चला क्लोरोफार्म को एनेस्थीसिया के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बेहोशी के शोबे में तेज रफ्तार इकदाम किए गए जिससे माजी में लोगों के दर्द की चीखों पर तोजो दिए बगैर दांत खींचना पड़ता था या सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। आज एनेस्थीसिया लगाए बगैर कोई जराही मुदाखलत मुमकिन ही नहीं है। साइंस के साथ हमारा आज का सिलसिला प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा हफ्ते दोबारा पेश खिदमत होंगे, जब तक के लिए अपने मेजबान नानोपुर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।
1: अहम इजादात।

0: दिखा दिया है कि वो आलमी सियासत में एक अहम और फैसला कुन किरदार बन चुका है। सदर अरदोगन ने यह बात अंकरा में सदारती कम्प्लेक्स में मुनक़दा कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कही है। उन्होंने वाजे किया है कि तुर्की अब ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसे दूसरों के बनाए हुए मनसूबों में कोई किरदार दिया जाए, बल्कि यह एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो अपनी कहानी खुद लिखता है और अपने मुस्तकबिल को खुद संवारता है। तुर्की की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने से नए मौके पैदा होने का जिक्र करते हुए सदर अरदोगन ने कहा है कि न सिर्फ अपने बका के लिए बल्कि अपने दोस्त और बरादर ममालिक के अमन सुकून और इस्तेहकाम के लिए भी हमारे पास मजबूत होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो अपने खित्ते की सलामती को अपनी सलामती से अलग नहीं देखता और जितना सुकून अपने लिए चाहता है इतना ही अपने दोस्तों और भाइयों के लिए भी चाहता है। सदर अरदोगन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो एक बड़े और ताकतवर तुर्की की तामीर कदम ब कदम करते रहेंगे।
1: ईरान ने कहा है कि हमने अमरीका के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ईरान के सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि उसने बहरीन में अमरीका के 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर पर ड्रोन हमला किया है। यह कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी फजाई हमलों का बराह रास्त रद्दअमल है। IRGC ने कहा है कि खित्ते भर में फिजाई और बहरी अड्डे समेत कुल 21 अमरीकी अस्करी अहदाफ पर हमले किए गए हैं। सरकारी ज़राए अबलाग में शाया शुदा बयान में पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि अगर अमरीकी अस्करी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो वह भारी जवाबी इकदाम करेंगे। IRGC ने यह दावा भी किया है कि उसने जनूबी शहर बू शहर के ऊपर एक अमरीकी MQ-9 रैपिड ड्रोन को मार गिराया और कुवैत के अली अल सालिम फिजाई अड्डे पर ड्रोन हमला किया है। बाद अजा कुवैती फ़ौज ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन तैयारा नुमा हदफ को कामयाबी से नाकारा कर दिया है। ये कशीदगियाँ जनूबी ईरान के मुतादद मकामात बशमूल जासिक सर्क और किशम जजीरे के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर अमरीकी हदफी हमलों के बाद सामने आई हैं। अमरीका ने ईरान में एक टेली कम्युनिकेशन टावर समेत 20 अहदाफ पर हमले किए। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक खित्ते में झड़पों के वसी फैलाव के तनाजुर में IRGC ने उर्दन में वाक़ अमरीकी अल अज़राक अड्डे पर दूर मार मिज़ाइल गिराए हैं। हमले में अल अज़राक अड्डे के 4 मखसूस मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें F-35 लड़ाका तैयारों के हैंगर और एक कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ भी शामिल है। उर्दन की फ़ौज ने कहा है कि हमले नाकाम बनाए जाने के दौरान मिज़ाइलों का मलबा गिरा है, लेकिन किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दरअसल अमरीकी कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि हमने अमरीकी आर्मी अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही के जवाब में ईरान के खिलाफ जारी हमले मुकम्मल किए हैं।
0: ईरान वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक तहरीरी बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमरीका के ये हमले अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर और रियासतों की खुद मुख्तारी के हकूक के खिलाफ हैं। तेहरान इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अपने दिफा के जायज़ हक के तहत खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को जवाब दिया गया है। इसके साथ ही ईरान ने हमसाया ममालिक से भी अपील की है कि वो अपनी ज़मीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न करने दें। याद रहे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने उम्मान के साहिल के करीब अपने एक अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने का जवाब बनाकर रात के वक्त ईरानी ज़मीन को निशाना बनाया था। तेहरान अब अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से हंगामी कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है।
1: फ्रांस ने मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलविस होने की वजह से इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइली वजीर ख़जाना बेज़लील स्मोत्रिच के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर किया गया है। वजीर ख़ारजा जीनो बैरो ने कहा है कि स्मोत्रिच मगरबी किनारे के इलाक नई बस्तियों के क़याम और आलमी बरदारी के लिए नाकाबिल कबूल पॉलिसियों के हामी हैं। इसी तरह की पाबंदी इससे कबल इसराइली कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गुवेर पर भी लगाई गई थी।
0: भारत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान में पानी का एक कतरा भी न जाए। ये बात भारत के वजीर पानी ने नई दिल्ली की जानब से गुज़श्ता साल एक बड़े मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद कही है। पाकिस्तान इससे कबल कह चुका है कि वो सरहद पार से आने वाले पानी के बहाव को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को ऐलान जंग समझेगा और इसका कहना है कि 1960 का सिंतास मुआहदा अब भी नाफिज़ुल अमल है, क्योंकि इससे यकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। वजीर पानी CR पाटिल ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया है कि ये यकीनी है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। पाटिल ने हिंदी में बात करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हदायत के बाद भारत इस पर काम कर रहा है। ये मुआहदा 6 दरियाओं के पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करता है, जिसका मंबा तो भारत में है लेकिन वो सिंतास के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान में बहते हैं। ये एक ऐसा जरिया है जिस पर करोड़ों लोग इन्हसार करते हैं। दरिया सिंध भारत और पाकिस्तान के मुतनाज़े मुस्लिम अक्सरियत खत्ते कश्मीर में इंतहाई हसास सरहदी खतूत से गुजरता है। ये हमालय इलाका है जिस पर दोनों ममालिक मुकम्मल मलकियत का दावा करते हैं।
1: फिलिपाइन के जनूबी इलाके में अंदर नाव में

0: 8 जून को आने वाले 7.8 शिद्दत के शदीद जलजिले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है। फिलिपाइन के सिविल डिफेंस ब्यूरो की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि जलजिले के नतीजे में अब तक 630 अफराद जख्मी हो चुके हैं जबकि 17 अफराद अभी भी लापता हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल ने ऐलान किया है कि जलजिले के बायस लगभग 3,000 घरों को नुकसान पहुंचा है जबकि फिलिपाइनी फौज इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। तकरीबन 55 किलोमीटर ज़मीन की गहराई में आने वाले इस शदीद झटके को मुल्क में हालिया दौर की सबसे तबाह कुन कुदरती आफात में से एक करार दिया गया है।
1: जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के इलाके क्लीवलैंड में मुसलह हमले के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका की पुलिस ने आज बरोज पुत जारी करदा बयान में कहा है कि मंगल की शाम जोहान्सबर्ग के मशरकी इलाके क्लीवलैंड की एक कच्ची बस्ती में मुसलह अफराद की फायरिंग के नतीजे में कम अज कम 12 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने कहा है कि जम्पर नामी इस कच्ची बस्ती पर हमले के बाद 10 से ज्यादा मुशतबा अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। मकतूलीन में 9 मर्द और 3 औरतें शामिल हैं। इनमें से 11 मौका पर ही हलाक हो गए थे और 12वां अस्पताल में दम तोड़ गया है। पुलिस ने कहा है कि हमले का मकसद ताहाल नामालूम है। मुश्तबा अफराद एक सफेद टोयोटा क्वांटम में आए बस्ती में दो तरफ से दाखिल हुए, मुतअद्दिद मुकामात पर फायरिंग की और इसी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका कतल की वारदातों के हवाले से सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। यहाँ यौमिया औसतन 60 के करीब कतल होते हैं।
2: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: यूरोप में की जाने वाली एक जामे तहकीक से बात सामने आई है कि अमेरिका पर यूरोपीय बड़े आजम का भरोसा तारीखी सबसे निचली सतह पर आ गया है। यूरोपीय काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात की जानब से 15 ममालिक में किए गए एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 10% यूरोपीय लोग अमरीका को एक इत्तेहादी समझते हैं। हिस्सा लेने वालों की अक्सरियत को इस बात पर शक है कि किसी मुमकिन हमले की सूरत में वाशिंगटन उनकी मदद के लिए आएगा। बर आज़म यूरोप में वाशिंगटन पर इन्हिसार कम करने का रुझान मजबूत हो रहा है। वहाँ यूरोप के बने हुए फौजी आलात खरीदने के ख्याल को 70% से ज़्यादा लोगों की हिमायत हासिल हुई है क्योंकि अमेरिका को अब एक इत्तेहादी के बजाय एक मजबूरी का शराकत दार समझा जा रहा है। माहरीन का कहना है कि अवामी राय में यह तब्दीली यूरोपीय रहनुमाओं को दिफा के शुबे में ज़्यादा आज़ादाना इकदाम करने का मौका फराहम करती है।
1: यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के जेर कब्जा क्रीमिया के शहर सिवास्तोपोल में एक तारीखी म्यूजियम को निशाना बनाया है। मुकामी हुकाम ने बताया है कि फजाई हमलों के पेश नज़र रात के वक्त चलने वाली ट्रेनों की तादाद कम कर दी गई है। यह अजायब घर 1853 से 1856 के दौरान रूसी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया समेत दीगर इतिहादियों के दरमियान होने वाली क्रीमिया जंग की याद में बनाया गया है जिसमें रूस को शिकस्त हुई थी। सिवास्तोपोल के रूस की तरफ से मुकर्रर करदा गवर्नर मिखाइल राजोविजोव ने टेलीग्राम से जारी करदा बयान में म्यूजियम की छत पर आग लगी हुई दिखाई है। उन्होंने नुकसान पर या किसी के जख्मी होने के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। राजोविजोव ने आज सुबह अपने पोस्ट में कहा था कि दुश्मन को इस गुस्ताखी की कीमत चुकानी पड़ेगी।
0: यूनान ने महाजरीन की बेदखली का कानून मंजूर कर लिया है। यूनान पार्लियामेंट ने मंगल को रात देर गए कानून की मंजूरी दी है जिसकी रूस से मुस्तरद शुदा पनाह गुजीनों की बेदखली को तेज़ किया जाएगा और तीसरे ममालिक के साथ दो तरफा माहदे तय पाने के बाद उन्हें यूरोपीय यूनियन ममालिक से बाहर वाकई वापसी मरकज में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाएगी। वाज़ह रहे कि यूनान महाजरीन के यूरोप में दाखिले के अहम रास्तों में से एक है और 2015 तो 2016 के बहरान के दौरान मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका से 1 मिलियन से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल नकल मकानी लहर के यूरोप में दाखिले के हवाले से सर फहरिस्त रहा है। इसके बाद अगरचे नकल मकानी में कमी आई लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में अफ्रीकी साहिल से नज़दीक दो एजियन जज़ाय क्रीट और गाउदूस में महाजिर कश्तियों में तेज़ी से इजाफे का मुशाहिदा किया जा रहा है। ये कश्तियाँ ज़्यादातर लीबिया से उनके साहिल तक पहुँच रही हैं। यूरोपीय यूनियन के कानून साजों और हुकूमतों ने पिछले हफ्ते नए कवायद पर इत्तफाक किया है जिनके तहत जिन महाजरीन को जिन्हें यूरोपीय यूनियन ब्लॉक छोड़ने का हुक्म मिलता है उन्हें तीसरे ममालिक में कायम मराकज में भेजा जा सकेगा। तहम हकूक इंसानी तनजीमों ने इस कानून पर सख्त तनकीद की और कहा है कि इससे ज्यादतियों के दरवाजे खुल सकते हैं।
1: नासा ने आर्टमिस 3 مشن کے لیے باضابطہ طور پر چار رکنی عملے کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. یہ مشن انسانوں کی چاند کی سطح پر واپسی سے پہلے مدار میں ٹیسٹنگ کا آخری مرحلہ ہوگا. ناسا کے فلائٹ آپریشن ڈائریکٹر نارن نائٹ نے کہا ہے کہ یہ مشن ناسا کے اب تک کے سب سے پیچیدہ مشنوں میں سے ایک ہوگا. انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایجنسی اپنے اہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے عملے کی لگن پر بھروسہ کرتی ہے. اس مشن میں 2027 کے لیے زمین کے مدار میں مشکل تجربہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے.

0: नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम मैनेजर जेरमी पार्सन्स ने वाजे किया है कि यह मिशन दो हफ्ते तक जारी रहना चाहिए। अगर यह कामयाब रहा तो नासा का इरादा है कि वह 2028 में आर्टेमिस 4 मिशन के दौरान चांद के कुतुब जनूबी पर अपना अमला उतारेगा।
1: और व्हाइट हाउस ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए बाज़ शुरका पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी एक ज़रूरी कदम है। एक सीनियर व्हाइट हाउस हुकूमती अहलकार ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कई बैन अल-अक़वामी शुरका को अमरीका में दाखिले से रोकने के फैसले का दिफा किया और कहा कि एक महफूज माहौल की यकीन दहानी के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। व्हाइट हाउस टास्क फोर्स बरए फीफा वर्ल्ड कप के मुंतजिम एंड्रयू जुलियानी ने मंगल को जारी करदा बयान में इशारा दिया है कि शुमाली रेफरी उमर अब्दुल्कादिर अरतान पर पाबंदी का फैसला बहुत अच्छी वजह की बुनियाद पर किया गया है, तहम उन्होंने मजीद तफसीलात नहीं बताई। ईरानी वफद के वीज़ा मामलों पर गुफ्तगू करते हुए जुलियानी ने कहा है कि 31 खिलाड़ियों और मरकजी कोचिंग अमले को वीज़ा मंजूरी मिल गई और कई दीगर अहदेदारों के वीज़े मुस्तरद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुमकिन है कुछ अफराद ने टीम में अपने फ़राइज़ के बारे में गलत बयानी की हो। एंड्रयू जुलियानी ने कहा है कि जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ अफराद ख़ुद को कोच बताते हैं लेकिन शायद वो कोच नहीं होते। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में ख़बरें ख़त्म हुईं।
2: हम सदाए तुर्की से दुनिया भर से मुखातिब हैं।

0: तादाद भी बेहद कम हो गई है। जंग से पहले मजदूरों की तादाद 200 से 300 तक थी, जो आज महज 70 मजदूर रह गई है। ये अदादोशुमार एक तरफ इस बात का खुला इजहार है कि इसराइली हमलों ने किस तरह सन्नत और ज़राए आमदन को मफरूज कर दिया है, तो दूसरी तरफ इस पहलू को निगाहों के सामने ला रहे हैं कि मुकामी आजर कैसी मुश्किल इक्तसादी सूरत हाल और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पैदावार देने की जद्दोजहद कर रहे हैं। आइए अब 40 साल मेहनत के मुकम्मल खात्मे के गवाह बनते हैं। गजा की पट्टी के वस्ती हिस्से में वाक़े और इसराइली बमबारी से तबाह होने वाली बड़ी फैक्ट्रियों में शोमर टॉफी, चॉकलेट और बिस्किट फैक्ट्री भी शामिल है। चार मंजिला शोमर फैक्ट्री न सिर्फ गजाई मसनूआत की पैदावार देती थी बल्कि हजारों फलस्तीनी कुंभों का जरिया माश भी थी, जो अब मलबे का ढेर बन चुकी है। फैक्ट्री के मालिक अहमद शोमर ने नुकसान की कदोकाट को 40 साल मेहनत के अल्फाज के साथ बयान करना शुरू किया। अहमद कहते हैं, हमने इस सेक्टर को 40 साल कबल गजा से शुरू किया। इब्तदा में हमारी फैक्ट्री छोटे पैमाने की थी, जो वक्त के साथ फल फूल गई। हमारी फैक्ट्री 4 मंजिला थी और 3 एकड़ अराजी पर कायम थी। कई साल मुद्दत के दौरान फैक्ट्री ने 9 मुख्तलिफ यूनिटों से चिप्स, बिस्किट, क्रैकर और मुख्तलिफ इकसाम की टाफियों और चॉकलेटों की पैदावार देना शुरू कर दी। शोमर ने नुकसान का अंदाज़ा $15 लाख तक बताया है और कहा है कि ये फैक्ट्री 200 कुंभों की रोजी रोटी का दरवाज़ा थी। इसराइल की गजा पर मुसलत करदा नस्ल कुशी ने इस फैक्ट्री को ढेरों ढेर मलबे तले दफन कर दिया है। हम सब्र कर रहे हैं। हमारी वाहिद ख्वाहिश यही है कि दुनिया इस सूरत हाल को देखे और इस तरफ तवज्जो दे। इसराइली हमलों के हदफ बनने वाले सेक्टरों में से एक टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है। फलस्तीन टेली कम्युनिकेशन कंपनी के 12 अक्टूबर को शाया करदा एक दस्तावेज के मुताबिक लैंडलाइन टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट का 35% हिस्सा मफलूज हो गया है और इस सूरत हाल ने सारफीन के 50% से ज्यादा को मुतासर किया है। नस्ल कुशी के बाद के दिनों में ये तादाद और भी बढ़ गई। इसराइली हमलों ने बिजली के खंभों, बिजली के तारों और फाइबर ऑप्टिक लाइनों समेत मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। ऊपर से नुकसान यहीं तक महदूद नहीं रहा। हमलों ने गजा की पट्टी को मगरबे किनारे और बैरूनी दुनिया से मुंसलिक करने वाली मरकजी फाइबर ऑप्टिक लाइनों से भी काट दिया। दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। बाखबर रहिए, बासमीर रहिए।
1: फौलादी अज़्म और मुसम्म इरादे का नाम गज़ा।